0: और मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो और रेडियो Piyum yik kere wer kwaro
0: Mar me pacho
1: Iti yunyo or radio Piyum yik kere wer kwaro
0: Mar me pacho
1: Iti yunyo or radio

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम चुनके रे वेर क्वारो
0: पियम चुनके रे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डोटा
1: आ लोका कौन पे ने इटीनो और रेडियो
3: जानी प्रो यस लेट्स सी ग्वे another one

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: ओडो डोना मनी यो देखा रमोक लोना चोली को दे पलेजी जाने

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: अलीशान
1: मैं पाचू इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो
2: इमारा कुआं का वाकिंग यार के लिए